मन मनने कई बारी देखी दे उपदेश करने वाले ता बड़े ने कि सेवा करो सिमरन करो दान पुन करो पर आप कुछ नहीं कर दे। पर जिस गुरु नानक दे घर दा ए उपदेश है सेवा करो मन लाके सेवा करो ताकि तुहाडी सेवा सतगुरु प्रवान कर लो। जे गुरु नानक दा घर सेवा करन वास्ते कहंदा है ते गुरु नानक दा घर आप भी सेवा करदा है। किस तरह सेवा करदा है आप सुन के हैरान होवोगे कि कोई गुरु जिन्हों दुनिया नमस्कारा कर दी होवे जिदे चरणा दी धूड़ वास्ते दुनिया तरसदी होवे

बहुत सारी संगत श्री दरबार साहब अमृतसर दे दर्शना वास्ते तुर पई। पहला मोटर गड्डियां तो हुंदियां नहीं सन, बहुता लोग पैदल तुर के सफर करया करदे सन, किथे पिशौर किथे श्री अमृतसर साहब। पर मन विच प्यार है इस सारियां संगतां पिशौर तो तुरियां सफर करदियां बाणी पढ़दियां श्री अमृतसर पहुंचियां, जिथे अजकल उतली घर है। इस जगह जदों ये सारी संगत पहुंची रात पै चुकी सी, गर्मियां दे दिन सन। सारी संगत नूं जिहड़ा लै के आया सी जथेदार, उसने कहा साध संगत हनेरा पै गया, अमृतसर भी असीं पहली वारी आए हां, ते क्यों ना रात इत्थे आराम करिए। अमृत वेले जदू दिन चढ़ेगा दरबार साहब जाके धन गुरु अर्जन साहब दे दर्शन करांगे। संगत थकी हुई सी, प्रशादा भी छकना है, भुख भी लगी। सारी संगत बिस्तरे खोल के वछा के आराम करन लग पई, कुछ बाणी पढ़न लग पई। संगत थकी है, भुख भी लगी। संगत ने सुनिया नहीं भेजिया, ना किसी ने कुछ दसिया। अंतरियामी सतगुरु धन गुरु अर्जन साहब पता लगा गुरु नानक दी संगत आई है थकी हुई, लंगर भी छकना। धन गुरु अर्जन साहब ने किसे सिख नूं किसे सेवक नूं कुछ नहीं कहा, अपनी धर्म सुपत्नी गंगा जी नूं आवाज मारी, भाई गंगा गुरु नानक दी संगत आई है थकी हुई। संगत ने लंगर भी छकना, किसे नूं दसना नहीं। अज आपां संगत दी सेवा करनी है, भाई गंगा लंगर तैयार करो। धन माता गंगा जिन्हां नूं दुनिया नमस्कारां करदी, आप लंगर तैयार करन लग पए। लंगर तैयार होया, धन गुरु अर्जन साहब सिर ते कपड़ा इस तरह लपेट लिया कि रस्ते विच कोई पहचान ना लवे। आप सिर ते लंगर चुक लिया, दो वड्डे पखे हथां वाले हाथ विच फड़ लए, ते माता गंगा जी दे नाल बिना किसे नूं कुछ दसे संगत नूं लंगर छकाण वास्ते, संगत दी सेवा करन वास्ते

संगत दे कोल पहुंचे। संगत ने ए समझिया, धन गुरु अर्जन साहब ने किसे सिख परिवार नु लंगर दे के भेजे। धन गुरु अर्जन साहब ने, धन माता गंगा जी ने सारी संगत नु पहला लंगर छकाया। ए नहीं कहा कि मैं गुरु हां, सेवा की। जद सारी संगत ने लंगर छक लिया, हुण संगत आराम करन लग पई। गर्मी बड़ी सी, एक वड्डा पखा धन गुरु अर्जन साहब ने अपने हाथ च फड़ लिया। एक पखा धन माता गंगा जी ने अपने हाथ फड़ लिया। एक पासे पखा माता गंगा जी चलदे ने, एक पासे धन गुरु अर्जन साहब संगत नु पखा पै चलदे ने। सुती हुई संगत वाल देखदे ने। धन गुरु अर्जन साहब ते माता गंगा जी चेहरे ते मुस्कुराहट, अखां विच प्यार, ओ प्यार जिहड़ा प्यार एक माता पिता दा अपनी औलाद वास्ते हुंदा है। संगत वाल देखदे ने प्यार भरी निगाह दे नाल, खुश हुंदे ने ते पखा फेरी जांदे ने। अद्धी रात हो गई, धन गुरु अर्जन साहब ने तकिया, एक बुजुर्ग बाबा लम्मा पे है पर नींदर नहीं आ रही, लत्तां दुखदियां ने। ओ बाबा अपने हत्थां दे नाल अपने पैर पिया कुटदा है, सिख नूं दुख होवे गुरु किवें देख सकदा है। धन है गुरु अर्जन पातशाह, पखा एक पासे रखिया, उस बाबे दे पैरां वल आप चौंकड़ा मार के बैठ गए। धन गुरु अर्जन साहब अपनी हत्थां दे नाल उस बाबे दे पैर कुटन लग पए। वाह बाबा कैडी किस्मत है तेरी, जिस गुरु दे दर्शना वास्ते आए ओ गुरु तेरे पैर पिया कुटदा है, तू बेखबर सुता है। जद बाबा सौ गया, धन गुरु अर्जन साहब उठे, फिर जिन भी थका देखते ने ओदे पैरां वल जा पैंदे, ओदे पैर कुटदे। सारी रात पखा चलदे आ, पैर कुटदे आ बीत गई। अमृत वेला हो गया।

तू ते तेरी घरवाली ने सारी रात बड़ी सेवा कीती। असी धन गुरु अर्जन साहब नू जाके दसांगे, पर भोलिया नू की पता किस गुरु नू दसना है। ओ गुरु ता आप पखा चलदा रहा, आप पैर घुटदा रहा। हुण जथेदार धन गुरु अर्जन साहब नू कहंदा है, ऐ भाई सिखा जिथे इन्नी सेवा कीती है उथे होर सेवा कर थोड़ी जी। सानू दरबार साहब ले चल, असी पहली बारी आए हैं। धन गुरु अर्जन साहब उसे तरह सिर ते कपड़ा लपेटे है के रस्ते विच कोई पहचानी ना, अगे अगे आप तुर पे ते पिछे पिछे

दर्शनी ड्योढ़ी कोल पहुंची वड्डे दरवाजे कोल संगत दा जथेदार धन गुरु अर्जन साहब नू कहन लगा ऐ सिखा तू बड़ी सेवा कीती हुण सानू ए दस असी अपने जोड़े अपनियां जुतियां किथे ला के रखिए तन है तन गुरु अर्जन साहब कहन लगे साध संगत तुसी अपने जोड़े अपनियां जुतियां इत्थे ला दियो मैं इन्हां दी रखवाली करना तुसी दर्शन करियो सारी संगत ने अपने जोड़े ला दिते सारी संगत दरबार साहब दे अंदर वल तुर पई पिछों उस अरशां दे मालक धन गुरु अर्जन साहब ने काली नाल सारे जोड़े इकट्ठे कीते उन्हां जोड़ियां दे विचकार आप चौंकड़ा मार के बैठ गए जेब च रुमाल कढ़िया एक हथ विच संगत दा जोड़ा फड़िया रुमाल दे नाल जोड़ा पूंझिया उस रुमाल नूं अपने मुंह ते फेर लिया फिर जोड़ा चुकिया फिर रुमाल नाल पूंझिया फिर रुमाल नूं अपने चेहरे ते फेर लिया संगत दियां जुतियां संगत दे जोड़े रुमाल नाल पूंझदे ने ते रुमाल नूं अपने मुंह ते फेरी जांदे ने ते नाले मुस्कराई जांदे ने ते मुंह तों कहंदे ने गुरसिखां की हर तूड़ दे हम पापी की गत पाए ऐ सतगुरु गुरसिखां दे चरणां दी तूड़ी दे ताकि मेरे वर्गे

राती संगत आई धन गुरु अर्जन साहब रात दे किशोर दी संगत नूं दर्शन देण गए। ये सारे हैरान होके कहन लगे बाबा जी किशोर तों ते असीं आए। अगू बाबा बुढ़ा जी हैरान होके कहन लगे तुसी किशोर तों आए हो तुहानूं गुरु साहिब मिले नहीं? कहन लगे नहीं बाबा जी सानू नहीं मिले। तां बाबा बुढ़ा जी कहन लगे ये किवें हो सकता है, सानू हुणे पता लगा कि धन गुरु अर्जन साहब आप माता गंगा जी दे नाल लंगर लै के रात दे पिशौर दी संगत कोल गए। जदों ये सुनिया लंगर लै के गए नाल माता गंगा जी दे ते सारिआं दे मन नूं इक धक्का जिहा लगा, हथ जुड़ गए, अखां भर आईआं, अखां ने ते रोणा सी, दिल भी रो पए। बाबा जी ओ गुरु सन नाल माता गंगा जी जड़े लंगर लै के गए, बाबा जी बड़ी भुल हो गई, ओ गुरु उन्हां लंगर छकाया, वो सारी रात सानू पखा चलदे रहे, साडे पैर घुटदे रहे। बाबा जी ए देना कित्थे देंगे? तां बाबा बुढ़ा जी घबरा के कहन लगे हुण गुरु अर्जन साहब कित्थे ने? ते सारिआं ने रोंदिआं आखिआ बाबा जी उस गुरु नूं हुण अपने जोड़िआं दी रखवाली बिठा के आए। बाबा बुढ़ा जी बाहर नूं भज पए, पिछे पिछे संगत नजारा थकिआ, चार चपेरे संगत दे जोड़े, एक हथ विच रुमाल एक हथ विच जोड़ा। जदों फिर रुमाल दे नाल जोड़ा पूंजिआ, रुमाल मूंह ते फेरिआ, जदों दुबारा जोड़ा चुकिआ ते बाबा बुढ़ा जी ने जोड़ा खोलिआ, पातशाह गुरु होके ते की कर दे? संगत भी वैराग च आ गई ते धन गुरु अर्जन साहब ने कहा भाई किसे ने रोना नहीं, पछतावा नहीं करना, तुसी गुरु नानक दे घर आए हो, जेड़ा भी तुहाडे जोड़े चाड़ेगा वो जो मंगेगा ओनू मिलेगा, जेड़ा भी संगत दे जोड़े चाड़ेगा ओदा जन्म मरण सौर जावेगा। ऐसा गुरु जेड़ा कहिंदा नहीं सेवा करो बल्कि आप भी सेवा करता है ते उपदेश करता है ऐसी सेवा करो कि जिदे नाल

जगत जलंदे नू थारन जो आए सी वेख्या संसार ते बड़े जुलम पै रहे हन जे सकता सकते को मारे ता मन रोश ना होई ता कोई रोश नहीं पर गरीब जनता नू लताड़िया जा रहा सी लहू दियां नदियां बहाइया जा रही सन सैदपुर दे पठान जो हिंदुस्तान ते काबज सन जनता नू लिताड़ रहे सी बड़ी दुखी सी जनता बड़े हंकारी हो गए सन निरंकार दी लीला है पाप की जंज लै काबलों दाया जो के निरंकार दा खेल है ए बाबर ने भी राज भाग करने सी आके ते काट इस भी ना कीती हिंदुस्तान ते आके बड़े जुलम ढाए जिथे सैदपुर दे पठाना नू सजा मिली उथे फिर गुरु नानक साहब सचे पातशाह बाणी विच दस रहे हन जैसी में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो पाप की जंज लै काबलों धाया जोरी मंगे दान वे लालो मुगला ने आके चढ़ाई कीती ते फिर जोर दे नाल आके दुनिया कोलों धन दौलत सब कुछ खो लिया गरीबां दे लहू बहाए जिथे शहूकारां नू लुटिया उथे संतां साधुआं फकीरां नू भी पकड़ के अपने कैदी बना लिया ते जगत जलंदे नू थारन लई आए निरंकार दा रूप कोट ब्रह्मंडा दे मालिक सुख जो देना सी संसार नू आप भी इस टोले विच हो विचरे जो कुछ लुटिया सी ए माल धन चुकन लई लोड़ सी उना नू ते सारियां दे सिरां ते पंडा रख दितियां ते अगे ला लिया धन गुरु नानक पातशाह जी दे सिर ते भी पंड रख दिती पर इना ने की तकिया के धन गुरु नानक पातशाह एक हाथ विच माला है दूजे हाथ विच काशा है ते पंड चार उंगलां सिर तो उपर चल रही है सिपाहियां ने जाके अपने सरदार नू दस्या भई एक फकीर ऐसा अजमत वाला है जिसने हाथ भी नहीं रखिया होया ते पंड नाल नाल चली आ रही है सिर ते उचारण करो श्री वाहिगुरु इना ने जिथे लुट दा माल कठा कीता होया सी नाल ही एक कैद खाना भी बनाया होया सी जिथे चक्कियां रखिया हुई सन फौजां दे आटा पीन दे सारियां नूं कणकां दित्तियां गईयां भई चक्कियां चलाओ भई ते आटा पीवो धन गुरु नानक पातशाह जी नूं भी दित्ती गई ते गुरु नानक सचे पातशाह जिन्हां ने अरदास कीती सी जगत जलंदा रख लै अपनी कृपा धार जित द्वारे उभरे तिते लेहो बार हे निरंकार तेरी सृष्टि इतना दुख भोग रही है इतनी कुरला रही है कृपा कर इन्हां नूं सुख सुखी कर धन गुरु नानक पातशाह मरदाने नूं कहण लगे मरदानिया तैनू चक्की चलाउण दी लोड़ नहीं तू परमेश्वर दा सिमरन कर रबाब वजा बाणी आई है ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने ए शब्द उचारण कीता के एती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया हे निरंकार कृपा कर प्रजा ते बादशाह दा की मेल हुंदा है प्रजा दे गरीब बंदियां दा ते बादशाह दा मेल इस तरह है जिवें एक शेर गौआं दे वग नूं अगे ला लवे
पर उसका रथवाई उदी रखवाली करता है। तू कृपा कर इस जगत जलंदे नू सुखी कर। एक अरदास कीती जा पादशाह बाबर नू पता लग्या कि एक ऐसा अनोखा फकीर आया है कैदी बन के जिदी चक्की आपे चल रही है, आप ओ गले विच दाने भी नहीं पा रहा, आपे ही दाने पै रहे हैं ते आपे ही पीछे जा रहे हैं। ता आके जदों दर्शन कीते, दर्शन कर दिया आत्मा शुद्ध हो गई। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। बाबर ने किया हे बंदे खुदा दे तू कौन है? धन गुरु नानक पातशाह कहन लगा मैं कोई होर नहीं, मैं भी उसका एक मामूली बंदा हां, पर तू बंदियां वाले काम नहीं कर रहा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे बाबर नू भाई तू भाई खुदा दा बंदा है? आखे जी मैं खुदा दा ही बंदा हां। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे जेडे खुदा दे बंदे होंदे हन ओ खुदा दे बंदियां ते रहम करदे हन, जुलम नहीं ढांदे। जे किते बाबर खुदा दा बंदा होंदा ता फिर ए पशुआं वांगू दुनिया नू मारदा ना, लिताड़दा ना, निरादर ना करदा। खुदा दे बंदे विच खुदाई होंदी है, खुदा संसार विच वस रहा है ते संसार खुदा विच वस रहा है। जे संसार नू दुख देईए ता ओ दुख उस अकाल पुरख वाहिगुरु नू पहुंचदा है। तू निर्दोष प्रजा नाल क्यों एहो जे जुल्म कर रहे हैं? हुण सिपाही हुक्म दी उडीक विच हन भाई, अज इस दा छुटकारा नहीं हो सकदा, क्योंकि एडी वड्डी गल कर रहा है फकीर। पर बाबर दा मन झुक गया जदों अपने अंदर दा शीशा वेख्या कि जिस वाहिगुरु ने जिस अकाल पुरख ने एडे सुख दिते, एडियां वड्याईयां दित्तियां, ते मैं उसकी साजी हुई सृष्टि नूं सुख ना देवां, लताड़ा ता ओ मैनू किवें परवान करेगा। उच्चारण करो श्री वाहेगुरु। सतगुरां दे एक सन तां कौड़े बचन, पर असल विच उदे जीवन लई एक रोशन मुनारा सन। चरणा ते डिग पिया खुदा वालिया मेरे कोलों भुल हो गई है। ते धन गुरु नानक पातशाह जी ने उस वेले अकाल पुरख वाहिगुरु दे चरणा विच बेनती कीती है निरंकार कृपा कर इस जगत जलंदे नू रख लै, इना जीवां नू सुमत बख्श। ए पुन्ना करके बादशाह ता बन जांदे हन पर तेरी कृपा नू तेरी होंद नू ए भुल जांदे हन।

सच्चे पातशाह इस शब्द विच बख्शिश कर रहे हैं, सानू सुमति बख्श रहे हैं। ऐ मनुख, जेड़ी गल चेते रखन वाली सी उनू तू भुला दिता, तैनू चार कम तो चेते रह गए, खाना पीना हसना सौना, विसर गया है मरण, तैनू विसर गया है। जिस वाहिगुरु ने संसार ते भेजिया है उसने सदना भी है, जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वासा दी पूंजी, हीरे लाला तो महंगे तेरे श्वास, ते उसने हिसाब भी तो मंगना है। उना श्वासा दे लाला नाल कितने को तू नाम दे लाला दे वर्ज कीते हन, उथे ता लेखा पुछा जाना। इसलिए सानू चेता करा रहे हन धन गुरु नानक पातशाह, कहंदे ओ विसर गया है मरना, चेता कर मालिक ने सदना।

छेती घर जावो। इना अमोलक हीरियां लालां तो महंगे स्वासां दे नाल जे तू नाम दा वणज करके जावेगा ता तेरी इज्जत रह आवेगी, तेरा आउना सफल हो जावेगा। जिस कारज लई मालक ने तेनू घल्या है उदी सफलता ही सिमरन विच है, नाम विच है। ऐसा ना होवे अखां नीवियां पाके तू जाके बह जावे जिवें जुआरिया हार के बह जांदे चले जुआरी दोए हाथ जा। हजूर कहंदे ने इना अमोलक स्वासां दे नाल ओ तन कठा कर जेड़ा इथे भी तेरी सहायता करे। जदों तू पंज भूतक शरीर त्याग के जावें दरगाह विच भी तेरे नाल होवे। जदों तू आया सैन तेरे कोल स्वासां दी पूंजी सी, ऐसा ना होवे तू जावें ते तेरे हाथ दोवें खाली हों, अपनी प्रतीत भी गवा के जावें। इसलिए हजूर कहंदे ने आया सें स्वासां दी पूंजी लैके जा तां नाम दा धन खट के जा, फिर तेरा आउणा सफल है।

नाम रूपी अमृत पीता ओह ही सुचे रहे हन सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए उस परमेश्वर दा नाम जे हिरदे विच वस गया ता तू साफ सुथरा सोना बन के निरंकार दे द्वार जावेगा ते जे सिमरन नहीं कीता विकारां विच तू फस गया ता अपनी आत्मा नू ही कलंकित करके जाएगा किसे माड़े पुरुष नू संसार विच नहीं रहन देंदे कोल नहीं बैठन देंदे आख्या ऐसे तरह जदों तू दरगाह विच जावेगा ओथे भी तेनु कोई कोल ना बैठन देवेगा उच्चारण करो श्री वाहेगुरु इसलिए गुरमुख त्यावे से अमृत पावे से ही सूचे हो ओहो ही सुचे हन ओहो ही चंगे हन जिन्हां ने जपया

से तुझे बिसारिया सच कहे नानक चेत रे मन मरें हरणा कालिया। राजा लंघ रिया सी महापुरख बैठे हैं निरंकार दे चरणा विच जुड़े हुए। सोचिया बड़ी लंबेरी रात सी और बड़ी ठंड सी महापुरखा नू बड़ी तकलीफ हुई होवेगी। पूछन लगा महापुरखो रात कैसी बीत। महापुरख कहन लगे राजा कुछ तेरे वर्गी ते कुछ तेरे नालो चंगी। हैरान हो गया मैं मखमली शेजा ते सुता सारे सुख माने ते ये कह रहे है ठंड विच सुलकदा रहा होवेगा सारी रात। ये कह रहे है कुछ तेरे वर्गी ते कुछ तेरे तो चंगी। ये किवें हो सकदा है महापुरखो ये किवें हो सकदा है। मेरे वर्गी भी नहीं हो सकती ते मेरे तो चंगी किवें हो सकती है। ता ओ रब दे प्यारे महापुरख कहन लगे राजन जदों नींद आ जांदी है ना मनुख नूं भावें शेजा ते सुता होवे ते भावें भुएं ते सुता होवे इको जिहा ही होंदा है। इस लई तेरे वर्गी ते कुछ तेरे तो चंगी ता है कि तैनू जाग आई ता तू अपने नरक दा बूआ खोल लिया ते सानू जाग आई ता असी निरंकार दे चरण पकड़ असी सिमरन विच जोड़ गए। इसलिए तेरे नालों बहुत चंगी बीती है। जिन्हां नू मरना याद है उन्हां नू परमेश्वर याद है। इसलिए हजूर बख्शिश

गुरु सिख का जीवन कहा करन, जो गुरु का हुक्म है वो करन, जो भी बाणी नाल जुड़ना, सिमरन नाल जुड़ना, श्वास श्वास जपना सतनाम, जिन्होंने गुरु के हुक्म अनुसार अपने मन को सिमरन में जोड़िया, प्यारी सात संगत फिर वाहगुरू करदिया करदिया सिमरन करदिया करदिया ऐसी अवस्था बन जाती है, पहला वाहगुरू रसना से वसदा, फिर मन च वसदा, फिर रोम रोम च वस जाता है। खुश वाहगुरु शब्द जो है गुरु का मंत्र रोम रोम च वस जाता है, बाणी च आता है गुरमुख रोम रोम हर प्यार, जेडे गुरमुख ना जिन्होंने गुरु नु मुख रख लिया, जिन्होंने मन नु मुख नहीं रखे, जे मन ने कहा भी ये काम कर ले चलो कर लेंगे, मन तो गलतियां ना पुतल है, मन दे आखे नहीं लगना चाहिए, जे मन ने कहा भी उन्हें दाढ़ी कटी है तू भी कट लिया खुश भी हो, ये भी कुछ सीखी, ये भी कुछ सीखी दा प्यार नहीं, मन दे आखे नहीं लगना, मन नु जितना है वो असली सूरमा है बहादुर ही, जिन्हें मन नु जिते जरा मन दे मगर भजा फिरदा है वो कादा सूरमा। भाई साहब जी लिखते हैं मन वैरी नु जिसने जितया इस बादशाह जित जाता, सूरवीर वरियाम न कोई जिसने तैनू दिल विच जाता, इनू जितना है इसते कंट्रोल करना, वो सूरमा है जिसने मन ते कंट्रोल किया, जरा मन दे मगर लग गया मन तो गलतियां का पुतल, मिनट मिनट बाद अपने वासे च ही नहीं रहिंदा, असि इतने बैठे हाँ देसा दसात्रा दिया मन सैरा पे करता है, वह जिया थावान तो भी हो आता है, जिड़िया थावान ने वेखिया ने कोई ना कोई स्वरूप बना लेना अपने आप, तो मन को खिंचना है अपने वाल, आखो श्री भाई मन दे मगर नहीं खिंचया जाना, इनू अपने वाल खिंचना है भाई, इन्हू मित्र बना के इस तू कम लेना है, मन नु मुख नहीं रखना गुरु नु मुख रखना, गुरु नु कहा है जिन्होंने गुरु नु मुख रखे है प्यारी साध संगत, उन्होंने रोम रोम दे विचो सिमरन दी आवाज़ा, रोम पहला सिमरन रसना ते आके वसदा, रसना द्वारा मन ते, फिर मन विच वसिया फिर तन विच वस गया, मन विच वसिया फिर तन विच वस गया, फिर जिसले तन विच वस जांदा है सिमरन, फिर तन दे उत्ते 7 करोड़ रोम हन, शरीर दे उत्ते 7 करोड़ रोम हन, फिर एक रसना वाहिगुरु नहीं जपदी, 7 करोड़ भी नहीं जपया जांदा है श्री वाह, जे तेरी वाहिगुरु तेरी गुरमुख दी अवस्था, गुरमुख रोम रोम हर त्याग, गुरमुख रोम रोम हर त्याग, आओ करिए दर्शन पट्टी दे इलाके दे रहने वाले दो गुरु के सिख इतने पिंड च रहेंगे, गुरु की बख्शिश हुई, पंजवें पातशाह के दर्शन कीते, मन धोता होया सी चोली अड़के जाचना कीती, दाता जी बख्शिश करो विसरना ही दातार, अपना नाम देो गुण गावा दिन रात नानक जाओ, नाम दी दात बख्श, सचे पातशाह नाम, नाम पूरे गुरु तो मिलता है, पूरा गुरु कौन है प्यार नाल आखो धन गुरु अर्जन, पूरे गुरु तो दात मिलती, नाम अमोलक रतन है पूरे सतगुरु पास, सतगुरु सेवे लगियां कड़ रतन देवे प्रगाश, दोवां ने जाचना कीती, गुरु ने तकिया पांडा साफ है नाम वस्तु रख दी, गुरमंत्र लेके अपने घर आ गए, फिर अभ्यास शुरू कर दी, नाम दी वस्तु मिली उसनों कमाई दे नाल हिड़के अभ्यास शुरू किया, प्यारी सात संगत नाम जपदियां जपदियां ए अवस्था बनी, तुरदियां फिरदियां बहदियां उठदियां
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੇਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਂਦ ਰੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਤਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੰਤਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਜਤ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨਾ ਚਲੋ ਪੰਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਮੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਲਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤਾਂ, ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਉਹ ਜੀਵਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੀਵੇ ਹੋ ਆਪ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਸਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਸਾਈਂ ਵਸਿਆ। ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਈਂ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਮੁਰਦੇ ਸੀ।

ना मिले मर जाती है। सतगुरु मैं जल तो बगैर ते रह सकता हां, पर तेरे दर्शना तो बगैर मैं रह नहीं सकता। सत्संगियो ये प्यार दी हद है, जीवन वास्ते पानी जरूरी है। एथों तक इंसान जीव जंतु एक पासे, पानी तो बगैर जल तो बगैर दरख्त भी सुक जाते हैं।

जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा। भाई गुरुदास जी कह रहे ने हर कृष्ण पायो, गुरु हर कृष्ण साहब अठवें गुरु बड़े बल वाले सन, जिन पहुंच देहली तजियो शरीरा, जिन्ह ने दिल्ली पहुंच के अपना शरीर त्यागया। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, बाल रूप विच जिन्ह ने कई तरह के कौतुक करके अते दुखिया दे दुख दूर करके दुखिया नु सुख दिता। बाल रूप तरियो स्वांग रचाए, तब सहजे तन को छोड़ सिधाए। ए गुरु का कौतक है कि जिन्हां ने छोटी उम्र विच ही दुखिया दे दुख दूर करके अपना शरीर त्यागया। आओ गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज के जीवन बारे

Quanto vuoi dire? ऐसे महान दर्शन दर्शन देखत ही शुद्ध की न शुद्ध रही बुद्ध की न बुद्ध रही मत में नाम वो ही देख मैं तो अपना आप ही भूल गई हूं दर्शन सुपने यूं भी भई कहो की रायन उत्तम सखी मतलब नु कहंदी तने मेनु सुपने च राती साई मिले तो मतलब सखी कहंदी फिर कहो की रायन उसका अंचल क्यों ना पकड़ लिया।